0: खरू कैसा महेश? कहीं
1: बस
0: खराब?
1: कहीं खराब नहीं रहे। क्या
0: आ कहीं रहो सर मेरे? एंग
1: खाई गया कैसे? नो
0: हुए शिंग हुए या मार कब ने बा?
1: नहीं बारे के ने आउ का पीने मरी को लगते आप लाइक रामी वाह रख रहा था उसी रोने आती है। वाह
0: हो मरी से उसे रोने आओ।
1: खाई गया ने बारे के पास हुई हम खुश रहने वाला हाँ ठीक है खुश रहा मोरे था खुरो खुरो काओ तो खुश रहने वाला खुरो ने वाले मोरे था खुश रहने वाला
0: Hi, okay. Did I need it?
1: bye
0: Bye-bye. Agora ke se bungani qinga ba ngaba qhara tsi da oni tsam khona ni u